0: राज कपूर और शैलेंद्र के बीच अल्फाजों का रिश्ता था। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, सुनसान मगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ। मनोज जी, राज कपूर की जिस इमेज के हम सब कायल हैं और हम जिस बारे में बात कर रहे थे, उसे गढ़ने में शैलेंद्र जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आप बात कर रहे थे फिल्म श्री 420 की और गाने की मेरा जूता है जापानी, तो आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं और आप हमें बता रहे थे उस गाने के बारे में।
1: हाँ नहीं, हम इतना ही कहना चाह रहे थे कि ये गाना एकदम लाइट वर्डेड है, पर अगर अंतरा आप सुने तो उसमें एक हमें खासकर अंतरा बहुत हम बहुत पसंद है
0: जी।
1: वो हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, व्हिच इज द गिफ्ट दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड विद ऑफ इमेजिनेशन। आई मीन दिस इज रियली समथिंग, चाहे आदमी कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो
0: जी,
1: पर ही हैज द एबिलिटी टू बिकम अ शहंशाह या राजा आल्सो, दैट वाज वन ऑफ इट। और ये तो जो गाने आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी बिकेम सो पॉपुलर, इनफैक्ट दे मोल्डेड राज कपूर्स इमेज। एंड राज कपूर जी ने किसी इंटरव्यू में बाबा के कई गुजर जाने के कल कई साल बाद ये कहा कि मेरी इमेज का जो क्रिएटर है वो शैलेंद्र है, आई मीन ही इज़ द वन थ्रू हिज सॉन्ग्स एंड वर्ड्स हु हैज क्रिएटेड माय इमेज, एंड सो ही अप्रिशिएटेड व्हाटएवर बाबा हैड डन और एंड एक्नॉलेज्ड इट व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट। एज टाइम वेंट बाय, जो हमें याद है और हमने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना, और बाबा को राज अंकल हरदम कविराज कहकर बुलाते थे, कविराज, और उनको अगर कविराज नहीं तो मैं उनको पुष्किन, जो फेमस रशियन पोएट हैं, वो नाम देकर भी पुकारते थे, तो मतलब कविराज और या पुष्किन
0: जी। तो कविराज की रचना मेरा जूता है जापानी, ये सुनते हैं हम।
1: हाँ जी।

0: तो मनोज जी, जो ये गाना हमने सुना, और जितने भी गाने हम सुनते हैं, तो जब मैं छोटी थी तो हम तो फिल्में नहीं देखते थे, और मुझे तो पर्दे पर क्या चल रहा है पता भी नहीं था। मेरे लिए तो बस कविताएं थी जो शैलेंद्र जी ने लिखी थी, और पिताजी ने बस वही समझाया था, वही सिखाया था। तो ये जो वजूद है उनके गानों का, कि जो फिल्म के सीन से हीरो हीरोइन को निकाल देने के बाद भी अपने आप में संपूर्ण कविता जिसे हम कह सकते हैं, तो वो पहले से ही लिखते आए, कवि ही रहे, कोई इंस्पिरेशन, कोई चीज़ आप हमें बताना चाहेंगे उस दौर की?
1: बाबा मतलब पहले से ही, जैसे हमने बताया, कविता तो लिखते ही थे, गाने का दौर तो बाद में आया, पर ही वॉज ऑलवेज अ पोएट। बट एक तरह से उनको थोड़ी इनजस्टिस हुई, क्योंकि गाने जो लिखते थे, अनलाइक जो आज हो रहा है गानों में, आप लिरिक्स सुनेंगे, इट इज ओनली विद द सिचुएशन ऑफ अ फिल्म। पर इन बाबास केस इट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि जैसे कि अनाड़ी का गाना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी हो होशियारी, ये फिल्म के पिक्चराइजेशन और स्टोरी के हिसाब से तो इट गोज वेरी वेल, वो तो है ही है। पर अगर आप एक एक अंतरा सुने, इसमें उसमें काफ़ी डेप्थ है, कुछ मैसेज दिया जा रहा है, और वो अगर वो जैसा आपने कहा कि अगर उसको फिल्म के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालें भी, इट इज इट विल स्टैंड आउट एज अ पोएट्री ऑफ इट्स ऑन इट्स ओन ऑन वर्थ।
0: एग्जैक्टली,
1: तो दैट वॉज देयर, पर फॉर सम किसी वजह से, बिकॉज क्योंकि वो गाने फिल्मों में लिखते थे, तो साहित्य जो कवि थे तो उनको थोड़ा अलग ही रखते थे, पर जहाँ जहाँ मौका मिलता था बाबा कवि सम्मेलन में जाते थे, अपनी अपनी रचना सुनाते थे, और ऐसे कई कवि सम्मेलन में हम लोग एज अ फैमिली या इंडिविजुअल, एज मी एज अ बॉय और चाइल्ड, हम लोग कई बार गए और अटेंड किया हम लोग ने। So he kept his roots as a poet despite the film lyrics that he was writing.
0: Yeah, और शायद वही सबसे खास बात है कि इतने कमर्शियलाइज्ड इंडस्ट्री में भी अपना जो अपनी गाने की आत्मा है, और जो वो कवि थे, वो उन्होंने हमेशा ही बनाए रखा हर गाने में।
1: आप ये देखो ना कि राज कपूर के साथ he I mean not only him matlab Shankar Jay Kishan Hasra Jaipuri also जी. they were on a fixed salary aur baba ki salary thi right till the time he died 500 rupees per month
0: really
1: aur outside Raj Kapoor's films RK films I mean he was one most one of the highest paid lyricists at that time I think उर्दू राइटर्स में साहिर लुधियानवी थे, और हिंदी में तो बाबा वॉज नंबर वन एंड ही कमांडेड अ वेरी गुड प्राइस। तो इट इज़ नॉट अबाउट मनी, ये जो 500 रुपए हम बता रहे हैं सैलरी, पर आप राज कपूर जी के फिल्मों के गाने सुने, ही इज गिवन इज बेस्ट वर्क्स फॉर हिम, और विदाउट एंड द मनी इज नॉट एन इशू ओवर हियर। सो इट्स नॉट because of commercial, he's not trying to make money or something, but he wants to give his heart or the very best that he can think of.
0: Definitely. Sab kuch sikha humne, na sikhi hoshiyari. Ye sach hai duniya walon ke hum hai anadi. To chaliye, wahi sunte hain hum, baba ke liye. Okay.

0: तो मनोज जी, आप बात कर रहे थे कि म्यूज़िक का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है मेलोडी का और बैकग्राउंड में जो चल रहा है, राइट?
1: जी।
0: तो आप हमें बताइए कि कैसे वजूद पाती है नज्म, किस सिचुएशन पर एक गाना होता है, या गाना अच्छा है तो सिचुएशन लिखी गई। शैलेंद्र जी लिखते थे तो कोई खास कल्पना धुन के उनके मन में होती थी, या कैसी केमिस्ट्री थी उनकी उनके म्यूजिशियंस के साथ, और कैसे मुकेश या मनाड़े न्याय कर पाते थे उन लफ्ज़ों पर, कैसे सब कुछ बनता था, क्योंकि आपने ये सब करीब से देखा है।
1: पहली बात तो जहाँ तक हमें याद है, आई वाज अ चाइल्ड एक्चुअली व्हेन बाबा वाज एट हिज पीक, फिर भी जनरली द सिचुएशन, जो फिल्म की जो गाने की सिचुएशन है वो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार को बताई जाती थी कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा हमें गाना चाहिए
0: जी।
1: तो उस हिसाब से द म्यूजिक वाज कंपोज। जनरली इट कैन बी ईदर वे, इसकी कभी पहले धुन पहले कंपोज होती थी और उसके बाद वर्ड्स, या वर्ड्स पहले और उसके बाद धुन। एक बात है कि बाबा, जहाँ हमने देखा था कि बाबा जब अपनी ऑफ आउट ऑफ फिल्म जो रचनाएं हैं, कविता है, वो स्टेज पे गाकर सुनाते थे वो, और अपनी धुन में। तो हमें ये हमारे को कुछ डाउट है कि हालांकि हम प्रेजेंट तो नहीं थे
0: जी,
1: पर his contribution is definitely there even in music of a or tune of a song. हमें जैसे कि तीसरी कसम का जो गाना है, चलत मुसाफिर मोह लिया रे
0: जी,
1: हमें लगता है कि ये कॉम्पोजिशन बाबा की ही होगी, क्योंकि और फिर एक दो बीघा ज़मीन का भी एक गाना हमें याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक उसमें भी आई हैव अ फीलिंग दैट देर इज़ अ टच, बिकॉज हम रिलेट करना चाह रहे हैं कि जो हमने देखा है बाबा को गाते हुए स्टेज पे अपने कविता, उसका कुछ हमें लगा कि उसमें कुछ देर इज़ सम टिंज ऑफ his recitation over there. तो हो सकता है कि he may have not composed, but he may have definitely contributed to giving some ideas or pushing it forward. तो और जहाँ तक 99% of the time the songs are created based on the situation of the film. पर हमने एक वहीदा रहमान जी पर एक रेट्रो प्रोग्राम हुआ था सियाटल में कुछ साल पहले
0: जी।
1: तो उन्होंने, वहीदा जी ने ये बताया, आई मीन विच आई डिडंट नो, कि वो जो गाना है गाइड का, सीजन्स पे बेस, हमें याद नहीं आ रहा, तो उस जब देवानंद ने देखा कि इतना गाना इतना अच्छा है और इतनी अच्छी तरह से पिक्चराइज हो गया है,
0: हाँ।
1: तो ही फेल्ट काइंड ऑफ थ्रेटन्ड, कि उन्होंने बोला कि नहीं, इस हमारा एक गाना हमारा भी होना चाहिए पिक्चराइज्ड ऑन मी। तो दिस इज वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स वेयर अ सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ सॉन्ग फॉर देवानंद, क्या से क्या हो गया बेवफा। सो दैट वाज अ फॉलो अप एज पर वहीदा रहमान जी की, ये ही डिडंट वांट टू बी ओवरशैडोड बाय द एक्ट्रेस, सो ही गॉट अनदर सॉन्ग ऑन हिम पिक्चराइज्ड। सो आई मीन जनरली दिस इज इट, कि सिचुएशंस होती हैं एंड गाने आर सॉन्ग्स आर रिटन ऑन दैट। मेलोडी का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और up to I would say, I mean this is my view, okay, it's not anyone else's view, ki up to early maybe late 70s tak there was little bit of melody, but after that today I mean I don't see melody, I see the stress is more on rhythm. जो गाने लोगों को पसंद आते हैं because of the rhythm, they are there for a few months, weeks, whatever, उसके बाद they fade out. पर अगर आप पुराने गाने सुने तो बिकॉज द मेलोडी इज सो स्ट्रॉन्ग, द वर्ड्स आर सो अट्रैक्टिव, दे स्टैंड आउट टिल टुडे। और लोग, आई एम सरप्राइज्ड कि जैसे हमारी बेटी पूजा है, आई मीन शी इज बॉर्न हियर, आई मीन हैज नो

0: नॉलेज ऑफ हिंदी फिल्म एज सच, पर उसको पुराने गानों से बहुत लगाव है और उसको पसंद आया. तो हम सोचते हैं कि आई मीन हैज टू हैव देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट दोज सॉन्ग्स कि आज तक शी इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग ऑल्दो शी इज टोटली नॉट कनेक्टेड विद इंडिया इन दैट सेंस. तो और I have met over, especially in the last few months, a lot of young girls and boys जो गाना गाते हैं और गाने गाने का शौक है और उनको पुराने गाने बहुत पसंद है और वो पुराने गाने ही गाते हैं. तो I mean, I think the melody is what is keeping all the old songs alive.
1: जी, मेलोडी वर्ड्स जिससे लोग अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं और अभी भी वो रेलेवेंट लग रहे हैं यंग जनता को.
0: हाँ, डेफिनेटली. आई मीन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर.
1: या तो इन आइकॉनिक बातों के बाद एक आइकॉनिक गाना हम सुनते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार.

0: तो मनोज जी, संगीत की बात हो, गानों की बात हो, तो एक ऐसा नाम जिनका नाम लेकर ही मैं तर जाती हूँ, लता दीदी। और आपने तो करीब से देखा होगा, जाना होगा, सुना भी होगा, उन्हें रूबरू हुए होंगे, तो उनके बारे में कोई याद या उनके और शैलेंद्र जी के बीच का इक्वेशन या कुछ भी आपको ऐसा शेयर करना चाहें आप?
1: नहीं, इतना हमारे को मौका तो नहीं मिला। हाँ, रिकॉर्डिंग्स पे हम उनको देखते थे
0: जी।
1: पर शी वॉज क्वाइट क्लोज टू द फैमिली, मतलब मदर के साथ और बाबा के साथ, तो ऑफ कोर्स बहुत ही करीब से उन्होंने कई गाने गाए हैं, नॉट ओनली फॉर शंकर जयकिशन बट लॉट ऑफ अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो और उन्होंने कई बार एक्नॉलेज भी किया कि ये जो उनकी एसोसिएशन थी शंकर जयकिशन के साथ, ऑब्वियसली विच मीन्स शैलेंद्र हंसल जयपुरी टुगेदर, तो दैट हैज़ मोल्डेड हर। आई मीन दे रियली मेड हर व्हाट शी वाज एक्चुअली। द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन वाज थ्रू देम, क्योंकि उसके पहले बरसात के पहले म्यूजिक डायरेक्टर जो काफ़ी पॉपुलर थे वो नौशाद साहब थे
0: जी।
1: और पर अगर उनकी और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में गाने दिए और सो ऑन, बट द चेंज विच शंकर जयकिशन ब्रॉट इनटू द फिल्म्स वाज डायनामिक। आई मीन दे वर रियली अहेड ऑफ दैट टाइम।
0: और मैं जब आपसे बात कर रही थी कल, तो आपने लता जी के जब गानों की बात चली, तो आपने कहा था एक गाना आपको बहुत पसंद है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म।
1: हमें हाँ, ये गाना आई मीन आई रियली रियली लव दिस सॉन्ग, क्योंकि इसमें बाबा जो ये गाना इज़ वेरी रेलेवेंट विद द फिल्म सिचुएशन, यू नो जो कह रहा हूँ, देयर इज़ नॉट इनफ टाइम टू गिव द स्टोरी ऑफ द फिल्म, बट जहाँ तक हमें याद है वो दिल अपना और प्रीत पराए फिल्म थी और उसमें दिस सॉन्ग हैज़ द वर्ड्स आर वेरी रेलेवेंट विद द फिल्म। बट अगर इसी गाने को बाहर निकालें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म, जहाँ एक अंतरा है जो किसी के साथ तुम नया जहाँ बसाओगे,
0: किसी के इतने करीब कि सबसे दूर हो गए।
1: हाँ, तुम मतलब आई मीन इट इज़ सो रेलिवेंट। और एक दूसरा भी एक अंतर है कि कुछ धुआं उठा चिराग से, के ख्वाब देखती हूँ मैं या जग गई हूँ ख्वाब से। माई गॉड, दिस लाइन इज जस्ट किलर लाइन फॉर मी एटलीस्ट। सो हमारे लिए ये गाना बहुत ही खास है, प्लीज यू मस्ट प्ले दिस सॉन्ग।
0: बिल्कुल, यानी जहाँ हम इतनी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं वही एक रोमांस से भरा हुआ दिल, राइट? तो हम जरूर सुनते हैं, अजीब दास्तां है ये।

0: मनोज जी, मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी जितनी सहजता से हमें समाज की ऊंच नीच समझाते थे और हंसते हंसते अपने दिल का हाल बयां कर देते थे अपने लफ्ज़ों में, उतनी ही सादगी से वो एकदम अचूक पढ़ पाते थे नारी मन को। क्योंकि जब हम गाइड की बात करते हैं और वहीदा रहमान पर जो उनके गाने हैं, पिया तो से नैना लागे रे या आज फिर जीने की तमन्ना है, तो वो तो एक कम्युनिस्ट हैं, समाज की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहीदा का जो कैरेक्टर है, उसके दिल की जो बात है और जो मेरे जैसी लड़की के दिल की बात है, उसे समझ पाना, इतना अचूक लिख पाना कैसे कैसे पॉसिबल था, क्या कहेंगे आप?
1: ये इस सवाल का जवाब तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम भी कभी कभी सोचते हैं कि अगर बाबा होते तो हम उनसे पूछते हैं आपने लिखा कैसे ये
0: जी।
1: पर इट इज़ एन एनिग्मा। ये गाइड फिल्म वॉज अ क्वाइट अ ऑफ बीट फिल्म इन सम वेज, जहाँ देर इज़ अ मैरिड वुमन एंड शी लीव्स अ हस्बैंड एंड शी इज हैविंग एन अफेयर विद द गाइड, और to and but it was presented so well ki people accepted it, and I think a guide shayad Devanand ki pehli silver jubilee film thi, he had never had a silver jubilee film before that. To aur ye jo gana hai kaanton se khinch ke yahan chal, I mean it tells the story of the how liberated the person is feeling ki from a marriage that was not going anywhere. Or yes. And now that she is aaj fir jeene ki tamanna hai, aaj fir marne ka irada hai. I think it is a very well composed and very well written song.
0: और कहते हैं ना इसे बिल्कुल हेवनली कॉम्बिनेशन की शैलेंद्र जी ने लिखा और वहीदा जी ने उसको इतने अच्छे से निभाया।
1: अच्छा, और हमें एक बात तो बताना भूल ही गए कि इस गाने की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो बॉम्बे में हुई थी, और हम और हमारा छोटा भाई दिनेश, हम लोग बाबा के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। और ये गाने, हाँ, इस गाने की रिकॉर्डिंग पे लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फेमस हुए बाद में, ही वॉज प्लेइंग द मैंडोलिन फॉर दिस सॉन्ग, और बर्मंदा ऑफ कोर्स वाज कीपिंग हिम इन चेक, कोई कि आप डिस्टर्ब ना करें बीच बीच में जब वो गाने की इंस्ट्रूमेंट्स की बैलेंसिंग होती है, तो ही डिडंट वांट एनी साउंड्स, और उनको मना किया था हमारे को, आई नो ही काइंड ऑफ रिप्रिमेंडेड हिम इन फ्रंट ऑफ, बट हमें वो ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद है, और खासकर वो जो डफ जो बचता है उसमें, और वो जो म्यूजिशियन ने बजाया, और वो हम आज तक हम भूले नहीं हैं। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग,
0: और इतने हजारों बार मैंने सुना है, लेकिन आज एक नए अनुभव के साथ आपकी बातों को सुनने के बाद फिर से ये सुनते हैं गाना
1: जरूर।

0: तो शैलेंद्र जी के बारे में आज के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र। दरअसल शैलेंद्र का रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं था। शैलेंद्र का रिश्ता उत्तर भारत के लोकगीतों से था। लोकगीतों में जो सादगी और गहराई होती है वो शैलेंद्र के गीतों में थी। और मनोज जी, इस तरह की फिल्म, इस तरह के गानों की बात आए तो फिर बात आती है तीसरी कसम की। और तीसरी कसम वंस अगेन अ लेजेंडरी मूवी, गाने, कहानी, निर्देशन, किस किस की हम बात करें, आप हमें कुछ बताएं इस बारे में।
1: तीसरी कसम आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग इट माय सिक्स्थ सिबलिंग, क्योंकि हमने राइट फ्रॉम द वर्ड, जो मुहूर्त था फिल्म का, उस फ्रॉम देयर टू द वेरी एंड आई वॉच द मेकिंग ऑफ द फिल्म, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैसे फिल्म बनती हैं, स्टूडियो में कैसे पिक्चराइज होती हैं, और उसकी जो फाइनली जो पर्दे पे आता है, हाउ डिफरेंट इट लुक्स। फिर उसके बाद फिल्म का जो अब फाइनल जो एक ट्रायल हुआ था आरके स्टूडियो में, और वहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन जी और उनके फैमिली राकेश, राजेश रोशन वगैरह सब थे, और ईरा जी उनकी वाइफ। और इस ट्रायल पे मतलब हम तो नहीं थे, पर हम गए ज़रूर थे, पर आई वाज नॉट विटनेस टू दिस कॉन्वर्सेशन। बट बाबा ने बाद में बताया कि राज साहब ने कहा कि ये फिल्म इज़ वेरी गुड, और इसको जो एंडिंग जो है इज़ अ ट्रेजेडी एंड इट मे नॉट बी वेरी सक्सेसफुल कमर्शली, तो आप ऐसा करो इसको चेंज कर दो, तो और यू कैन रिलीज इट अंडर आर के बैनर टू गेट फाइनेंसिंग, ये वो। बाबा सर कि ये दिस इज़ माई कॉम्पोजिशन, एंड द फिल्म वॉज बींग एडवर्टाइज एज लव लिरिक ऑन सेल्यूलॉयड, तो बाबा thought of it as a lyric, चाहे वो फिल्म क्यों ना हो, and he didn't want to budge from what he had composed as a film, and और उन्होंने राजा अंकल को मना कर दिया कि हम आर के बैनर पे में नहीं रिलीज करेंगे, आई विल रिलीज इट ओनली एज इमेज मेकर्स, जो हमारी कंपनी है, और ना तो हम एंडिंग चेंज करेंगे, इट डजेंट मैटर, जो होगा होगा। तो the film unfortunately there was jo baba was not a businessman ji, to us wajah se teesri kasam ki jo financial situation thi, he didn't get support from anybody, or those whom he trusted then had kind of left him and not supported him at that time, friends wagera jo ji, aur to he was under a lot of pressure, he was not a businessman, which is very very true, he was very emotional and very warm person, so he was kind of heartbroken, aur jab film teesri kasam Delhi mein release hui, he couldn't even go for the premiere because of the lawsuits brought over by the distributors, so he was really hurt by all this, and then finally he passed away. Par गुजर जाने के पहले, मतलब मे बी थ्री वीक्स और सो, एक बार हम बाबा अकेले कमरे में थे अपने, और शाम के टाइम, और हम उस कमरे में चले गए और ऐसे बात करने लगा बाबा, पता नहीं क्यों, वाई आई डोंट नो वाई टोल्ड मी दिस, कि बेटा देखो हमारे पास आई मीन आई ओ पीपल X amount, I don't even remember the figure. I owe people so much money. But Shankar Jaikishan today, forget about other music directors, Shankar Jaikishan today have 50 films on hand, signed. Agar is har film mein hame ek gana bhi likhe, I can wipe out all this debt. So, jo myth has been created over a period of time that he died of financial pressure, ye wo, I think that is all humbug, it's not even true. Aur the aur fir I'm ye hum kaano suni baat bata rahe hain ki aisa aisa baba ne bataya hamare ko, aur logon ko shayad ye nahi malum hai ki baba ne फणीश्वर नाथ रेणु जी जो राइटर थे तीसरी कसम के, उनकी अगली एक और स्टोरी पे वो फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो धर्मेंद्र जी को एज अ हीरो लेंगे उस फिल्म में. सो आई मीन अगर इतना फाइनेंशियल प्रेशर वॉज सच एन इश्यू, आई डोंट थिंक ही वुड हैव इवन अनाउंस्ड और थॉट ऑफ मेकिंग अ फिल्म
0: और प्लान द फ्यूचर.
1: तो दिस इज आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो पीपल हैव बीन saying, repeating and kind of all those myths are kind of becoming reality. So it's not hamare hisab se Baba never passed away because of financial reason. I mean he had enough in his bag to overcome the the financial difficulties. However, one thing that he couldn't overcome was the loss of friends whom he trusted so much from his heart. वो ही हमें वो गाना याद आता, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी
0: होशियारी. और यहाँ मैं KZSU के सुनने वालों को बताना चाहूँगी कि दिस इज़ चाय टाइम और हमारे साथ मेहमान हैं मनोज शैलेंद्र जी एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर हम्बल्ड एंड वी आर ऑनर्ड कि आप अपना समय हमें दे रहे हैं और इतनी छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. और तीसरी कसम ये फिल्म ये गाने जैसा कि आपने कहा आपके लिए एक सिबलिंग है, हम सब लोगों के दिल के वो इतने करीब है. तो हम उससे सुनते हैं अगला गाना, चलत मुसाफिर मोहलिनोरे पिंजरे वाली मुनिया.

0: तो मनोज जी कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। बचपन से ही जो नाम मैंने इतना ज्यादा सुना था, उनसे जुड़े लोगों से, उनके अपनों से मिलने की हमेशा हमेशा से ख्वाहिश थी मेरी, सिर्फ ख्वाहिश, उम्मीद कभी नहीं। और आपको मैं बता नहीं सकती कि ये पल, ये जो आज का एपिसोड है, वो मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। और मैं सोचती हूँ कि कितना गहरा रिश्ता है मेरा और आपका भी। आप बड़े हो रहे थे उस क्रिएटिविटी में, उनके साए में, आपके पिताजी के, जो ऐसी सुंदर रचनाएं रच रहे थे, आप गवाह थे उसके। और मैं इधर अपने पिताजी के साथ वही सब सुनकर जिंदगी में आगे कदम बढ़ा रही थी। तो आपके पिताजी शैलेंद्र और मेरे पिताजी दिवाकर, जिन्होंने मुझे शैलेंद्र जी को बस एक कवि के रूप में ही समझाया, बताया और उनकी हर लाइन, हर शब्द को समझाया, तो उनके लिए हम अगला गाना सुनेंगे। जो आप मुझे कह रहे थे कि उनका आपके साथ जो स्टूडियो में आखिरी रिकॉर्डेड गाना था, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, दिलेक मंदिर से,
1: हाँ,
0: गाना था
1: याद न जाए,
0: याद न जाए बीते दिनों की,
1: याद न जाए बीते दिनों की। इतना अच्छा गाना है, बहुत ही पसंद है ये गाना
0: जी।
1: और हम बाबा के साथ ये आखिरी रिकॉर्डिंग थी जो हम उनके साथ गए थे
0: जी।
1: ये फेमस स्टूडियो में था, तारदेव बॉम्बे में
0: जी।
1: और तब बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। आई मीन नॉट टू लॉन्ग गो बिफोर ही पास्ड अवे। तो ये और हमारी ज़िंदगी, अब तो हम यही कहेंगे याद ना जाए बीते दिनों की, अब ये तो हरदम बाबा की याद हमें रहेगी और ये गाना हमें हरदम याद दिलाएगा
0: जी। जैसा आपके लिए ये गाना इतना मायने रखता है, वैसा हम सब के लिए है याद ना जाए बीते दिनों की। तो फिल्मी गीतों को साहित्य की ऊंचाई तक ले जाने में और उसके स्तर को, स्टैंडर्ड को बनाए रखते हुए भी लोकप्रियता की चरम सीमा तक कोई पहुँच सका है तो वो हैं शैलेंद्र जी, और वो भी किसी क्लिष्ट भाषा या भारी जुबान का सहारा लेकर नहीं, लेकिन सच्चे, सीधे, सरल शब्दों के तले, ऐसे कि जाकर सीधे आपके दिल को छुएं, आत्मा तक पहुंचे, रूह को जगाएं। इनके लिखे बोल अद्भुत और बेशकीमती दस्तावेज हैं हमारे हिंदी फिल्म जगत के इतिहास के, और इसीलिए आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु ने शैलेंद्र को कविराज की उपाधि से अलंकृत किया था। और जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि राज कपूर जी भी उन्हें कविराज कहते थे। सजन रे झूठ मत बोल, न हाथी है न घोड़ा है, वहां कौन है तेरा ओ माझी, जाएगा कहां, नदियां फिर भी प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी, जैसे अमर गीतों के रचयिता शैलेंद्र को आज हम तहे दिल से याद करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मनोज जी का कि वो हमारे स्टूडियो में आए और मेरे साथ, आपके साथ उन्होंने अपने अनुभव, अपनी बातें शेयर की। और मनोज जी, आप जाते जाते हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे?
1: पहली बात तो हम आपका आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आप बाबा की यादों को हरदम ताज़ा रख रही हैं और आते जनरेशंस को जो अब इस वक्त कॉलेज वगैरह में हैं उनको आप ये गाने सुना रही हैं, उनकी याद ताज़ा करके उनको बता रही हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्रीब्यूशन ऑन योर बिहाफ एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड आई रियली मीन इट।
0: तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए याद न जाए बीते दिनों की।